0: जी बोलो। देखिए
1: बोला
0: किस नंबर पर आता है 3100।
1: Well, I'm in your case number 4315.
0: You can show me tonight.